कि हम कभी ही आ गए, कभी हुआ गए, कभी ही आ गए, कभी हुआ गए, कभी इधर भागे, कभी इधर भागे, फिर तुम न दिया ये पान तो आई हमरी जान में जान तो आई।